0: कृष्णा
1: मिट जाएगी तेरी तृष्णा भूल जा पूरा दे कृष्णा धन जाऊ मर गया
0: राधे श्याम।